तू अपना बिरद पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बां फड़ ले जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावें रखिया कीती जिवें उना दी पैज रखी जिवें उना दी रखिया कीती जिवें उना दी

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा। अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के, रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे। बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखे रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार आखिया सी, जा दलिदरी, सुदामा गरीब हो गया, दलिदरी हो गया, घरवाली दे कन्नी सरोत पई, एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया, ओ सानू भुले नहीं, आखिया की सबूत है, आखिया भुलदा उन्हां नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। कहण लगी जे सानू ओ ना भुलदे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे, इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी, तां सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच, पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी, नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी, भाग उन्हां दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है, उन्हां दे पुन्नां नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है, ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती, ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामां पईआं, मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैण नहीं। भगवान चट तैयार हो गए, मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा।

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ए आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जान। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतरजामी है। हर अंतरजामी सब बित जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का। भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रे। आखिया इतवार नहीं आया। कह लगे सुदामिया मेनू आवाज पई आउंदी है। तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्रे। सुदामा दलित्री हो गया गरीब हो गया। जिमें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी। बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आख्या ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई बामणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जाओ। ता बहाना लगाया भी एडे वड्डे पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई उगों धान भी छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है पर साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चोर जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जा।

आए इते ना किते दिन खोए इना दिन किथे रे रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा फर के ले आई जिसले चरण तोड़ लगे आओ सखा तू पाए महादुख आए इते ना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दिते फिर आखन लगे सुदामे सुनिया भी तेरा विआह हो गए हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हन तुहाडी कृपा है कहन लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलों की पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे सत्संग बोलो श्री वाह सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद है भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा ये मेरे भक्त दा प्रसाद है। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां दुख सुख फोले एक दिन सुदामे ने बेनती कीती भगवान हुण आ गया बख्शो बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावा वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा कहन लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं परे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन ओ दिन नहीं भुलते सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाओ ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है पता नहीं की कुछ बख्श वड़िया दा काम है दान देना छुपा के दे होछिया दा काम है दान देना दिखा के देना आख्या है वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण भी प्यार तो बड़ा कीता है जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते कुट गल वखड़ी पाई सुदामिया फिर भी आवी सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता तां कुछ नहीं बस गली बाती प्यार बड़ा कीता पर कुछ दे दिंदे घरवाली नूं की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिसदे बूहे ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन ओ की आखेगी उसदे द्वार तों तूं खाली आ गयो तैनू कुछ ना मिलिया ए मन विच पिया सोचदा ही सी जिसे कुट गल वखड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी पुठे पैरी सुदामा तुरिया कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो चंगे एस जमाने दे यार जारो जेड़े हाल आए मुड़े जामदे हां केड़ा बख्श दिता सानू माल यार हथों चौल भी दे गवा बैठे अजड़े कुछ कुछ चौल सन वह भी भुखा खा गए
जे ना खांदा ते असी एक डंग उबाल के खा लेंदे साडे बाल बच्चे दा गुजारा हो जांदा। ओ भी खा गए कुछ ना बख्शे। बड़ा निराश होया सुदामा। मन विच चोरदा जिस वेले घर वापस परतिया ते गली विच आया ते की डिठा भी जिथे उसकी चुगी सी उथे सोने का महल खलोता। सतसंग बोलो श्री वाह। किसे नु पुछदा क्यों भाई इथे तां सुदामे की चुगी सी। मैं आख्या सुदामिया इथे तेरा ही महल है ये सोने का मंदिर। हैरान पिया होवे सुदामा भी ये किवें बन गया सोने का। जा अंदर वड़िया घर वाली आई पैरी मत्था टेकिया। सुदामे ने आख्या आ सोने दा मंदिर। उसते भी नेत्र बार आए ते आख दी है स्वामी मैं आख्या सी ना एक वारी भगवान कृष्ण महाराज दे कोल जरूर जा साडा दलिद्र कटिया जाएगा साडी गरीबी कटी जाएगी। आ जो कुछ पे वेख दे हो सोने दा मंदिर अंदर पदार्थां दा ढेर लगा हो ये सब कृपा भगवान दी है।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल

रखे आवाज पे। कोई सोना दान कर सकता है, चांदी दान कर सकता है, माया दान कर सकता है, जमीन जायदाद राज भाग भी दान

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी, हुण तेरा कारोबार

गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा पर गुरमुख सतसंगत दी कुखों जन्म लैंदा। सतसंगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनूं गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है। जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है। गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबू वंडदा है ए गुरमुख दा दान है। गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है। गुरमुख नाम दान इशनान। गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख। कोई समासी किसे पासों सुगंधी आ रही सी किसे ने आके पुछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही। जिस पासों सुगंधी आ रही सी उसने कहा मेरे पास गुलाब दा फूल है। उसने गुलाब दा फूल दिखाया वेखण वाले ने वेखे।

माली दी नजर नहीं, माली दी नजर भी नहीं। आप हुजरे बूटे उग पेंदे, एक दूसरे दे अंदर इस तरह फस जांदे ने, रस्ते दे राह भी रोक लेंदे ने, जंगल दे राह भी रोक लेंदे। इस तरह बेतरतीबे बूटे संगणे, उन्हां दे अंदर खतरनाक लुटेरे भी लुके रहिंदे, खतरनाक जानवर भी।

किनारे सैर करते हुए जा रहे हैं, ते की तकिया नदी किनारे बगला बैठा केल कर रहा है, मच्छी पकड़ता है, चुक के ऊपर सुटता है, ते फिर मुंह विच बोच लेता है, केला कर थोड़ा ही समा बीतिया सी के बाज ने आके झपट मारी, मच्छी मुख विच है ते उस समेत बगले नू बाज चुक के लै गया। फरीद जी कहंदे ने मेरे मन ए काल रूपी बाज तैनू भी एवें पौ, पदार्थां रूपी विछिया रूपी नदी दे किनारे ते तू बैठा केल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मैनू कौन पुछदा केड़ा पापा दा बदला देना पैंदा। आख्या जदों काल ने झपट मारनी है तां तेरियां केलां तू जितनियां खुशियां विच रुझियां होया सब इत्थे ही रह जानियां हन। फरीद जी उच्चारण करदे हन।

मनुख बड़े सामान इकट्ठे करदा, बड़िया वस्तुआं संभाल संभाल रखदा है। भाई ये इस उम्र विच आ उस उम्र विच 100 बरस का समान इकट्ठा कर ले, पर पल की खबर नहीं, पता नहीं अगला श्वास आना भी है कि नहीं आना। पर मनुख बहुत कुछ कर ले। फरीद जी कहते हैं भाई ये तो कंधी उत्ते रुखड़ा, ये मनुष्या जन्म जिस तरह वहदे दरिया के किनारे ते कोई छोटा जिहा बरूटा होवे ते कोई पता लगदा किस वेले पानी दी छल आवे उस बूटे नूं रोड़ के लै जाएगी। बस तेरा भी इतना को ही जीवन है, क्यों एडिया पक्कियां बन बैठे हैं। एनी लोइनी देखदियां केती चल गई, तेरे अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए, तैनू अजे भी समझ नहीं आउंदी। तू भी उसे लाइन च खड़ा है, पता नहीं कल की दीवारी है भाई। ते फिर इसनू जप जप के मनुच्छा जन्म दी सफलता साध संगत दी सेवा और सिमरन करना, मन जोड़ना, अमृत वेले उठना। जो भी कोई गुरु, किसे दा भी कोई गुरु है वह मुबारक है। अपने गुरु दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के अपना जीवन सफल करे, मनुच्छा जन्म ताई सफल हो सकता है, संसार ते आना ताई सफल है। इसलिए फरीद जी कहते हैं फरीदा चार गमाया खंड के चार गमाया सम, तू ते जेड़ी गल चेते रखनी सी वो तैनू भोली गई है। तू चार कम तो चेते रख ले, खाना पीना हसना सौना, ते विसर गया है मरना। जे तैनू मरना याद होंदा तां तू अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन कर। तैनू पता होंदा मैं संसार ते किस लई भेजिया गया और केड़ा कम कर रहा। इसलिए चार गवाया हंड के

कहते हैं अगर तू मेरा प्यारा है जब तेरे नाल मेरा प्यार है तो उस प्यार दे विच कोई कमी रह गई उस प्यार दे नाल ते मेरिया तमाम भुखा कहते हैं वह पूरी हो गई हैं तू मेरो प्यारो इतना लफ्जी कहना यह सिद्ध करता है कि कोई हस्ती कोई शख्सियत कोई बींग मौजूद है जिस दे नाल महाराज जी का

तू मेरे प्यार हो तो कैसी भूखा, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, ऐ मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है, ऐ मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

0: दूसरी लाइन, जिन नाम प्यार, कहते जिन्हों का नाम दे नाल प्यार है वो जागे हुए हैं, बाकी सब सुते हुए।
1: से जन जागे जिन नाम प्यार,
0: एक और पंक्ति,
1: दावण दावे जिन नाम प्यार,
0: कहते गाँवे भी उही हैं जिन्हों का नाम दे नाल प्यार। एक और पंक्ति कहते हैं,
1: एक नाम तारे संसार, गुर प्रसादी नाम प्यार,
0: तो बार बार नाम प्यार आ रहा है।

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। सो इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसे ना किसे एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनू मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है ना। हुण असी महाराज जी तो आओ गुरबाणी चों पुछीए सच्चे पातशाह साड़ी समस्या यह है कि साड़े पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साड़े पास प्यार नहीं है, तो फिर साड़ा प्यार किस तरह करे? सवाल मेन इशू यह है महाराज जी, आप जी के घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साढ़े ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? ये किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो उहदे नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते दे रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 3 घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं है, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दी सारियां ही चीजा प्यारियां लगती हैं। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेका तेरे च गुण हन, क्योंकि जिहदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिहदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहंदे हन तेरे अत्यंत गुण हन, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, कहंदे तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हां, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हां। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप ते कई दफा तरस करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है। वट टू डू विद इट वी डोंट नो। Sometimes we even go to the extreme of taking our own life. पर महाराज जी आखदे हन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करदे हन कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहंदे हन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नू वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नू कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साध सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वो एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनू जानते हैं वो कित्थे है, महाराज जी नू उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भाव के हा काला जीव, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेमांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ए ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलारियां पईयां हन सामने, ते अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखिया है, ते महाराज जी आखदे हन उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहिंदे ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं, कहते नहीं, तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैं कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मेनू हीरे ना मेनू पर्ल्स ना मेनू स्टोन्स ना मेनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग, राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहते इन्हों चो मेनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बेन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है। साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मों रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलीशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नु, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखदे हन जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,

जवाब है बाणी। संत संगत मिल रहे क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम होंदे हैं, प्रेम रूप होंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साड़ी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया दे नाल ही बना नहीं है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनूं सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संत संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहाई प्रेम के, संत सहाई।

महाराज जी का उस नाम वाले दे नाल प्यार है, उस दे नाम दे नाल प्यार है, क्योंकि जिस नाल प्यार हो उसका नाम प्यारा लगता है, उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है, उसका हर कर्म प्यारा लगता है। तो साड़ी जाचना यह है कि सानू प्यार किवें प्राप्त होवे ताकि सानू भी नाम प्यारा लगे, सानू उसकी हर वस्तु प्यारी लगे, उसका हर कर्म प्यारा लगे, वो प्यार सानू किवें मिले। इस तस्वीर दे विच इस पॉइंट ते जाके गुरु महाराज जी गुरु नू विच लैके आ रहे हैं कि विदाउट गुरु दैट लव इज इम्पॉसिबल, गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही है जिसनू वो तमाम वजह का पता है कि साडे अंदर प्रेम क्यों नहीं है, अते गुरु ही है जिसनू पता है कि इन्हां दे अंदर प्रेम किस तरह पैदा करना है, जहर नू किस तरह निकालना है, पत्थरां नू रॉक्स नू किस तरह निकालना है। क्योंकि बाणी आखदी साडे अंदर ते पांच बड़े वड्डे वड्डे भूत रहिंदे हन, पांच भूत सबल है देही, इस देही च पांच बहुत शक्तिशाली भूत रहिंदे हन, उत्थे प्यार किथे होएगा। कोई उन्हां भूतां नू बाहर निकाले, कोई उन्हां पत्थरां नू बाल निकाले, कोई जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल नू बाहर निकाले, पहलां उस नू प्यार दे काबल ते बनाए। प्यार इतनी अमलीक वस्तु है, गुरु महाराज जी कहते हैं वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। अंदरली पहला सफाई, फिर गुरु प्रेम का ही सागर है, ते वो प्रेम साडे अंदर पैदा कर सकेगा। जब साडे अंदर प्रेम पैदा करेगा, जिथे नाम वाला है उस दे नाल मिलाएगा, उस मिलने च उस नाम वाले दे नाल प्यार होएगा, ते उसका नाम प्राप्त होएगा, ते उस दे नाम दे नाल भी साडा प्यार पाएगा। बाकी दी विचारां कल नू इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। आओ इस पंक्ति नू गा के जो कुछ कहा गया है इस नू याद रखने की कोशिश करनी, ते कल नू समय से दर्शन देने। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, एक प्यार दी एक मॉडल है, एक प्यार दी इंतहा है। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है तो मैं जीना हाँ, वरना कहते मेरे तो जीना भी मैनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

क्योंकि अरदास एक ऐसी शक्ति मालिक ने बख्शिश कीती है, कोई भी कार्य आरंभ करिए तामी अरदास, कार्य समाप्त होवे तामी अरदास, दुख विच अरदास, सुख विच अरदास। अरदास एक साडे जीवन दा पहला अंग है। हुण सतगुरु सानू समझांदे ने अरदास करनी किवें। अरदास आरंभ हुंदी है, सब तो पहले असी की पढ़ने हैं,

अरदास उस अगे करनी है जिसने तेनू पैदा किया। हुन अरदास की विधि दस देनी, मर्यादा दस देनी कि इस तरह अरदास करिए। हुन अरदास जो आरंभ हुंदी है असी इस पौड़ी का जाप करनी, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख खनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवन। कई इस पढ़ते ने ऊचे से ऊचा भगवन, नहीं भाई तुक है ऊचे ते ऊचा भगवन। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सुवाग्याकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। इथे भी एक मिस्टेक होती, तुमरी गत मित तुमरी जानी, नहीं भाई तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। लो भी अरदास आरंभ होई है, सारे खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, अरदास होने लगी। जो खड़े हो जानी है उस तो बाद अरदास दोहरान लगी है,

0: क्योंकि अरदास खलो के होंगी। अरदास एक जोदड़ी एक मिन तरला है ते वो खड़िया होके ही कीता जा सकता है। हुण जिवें किसे अदालत विच कोई केस पेश होवे जज सामने उच्ची कुर्सी ते बैठा हुंदा है केस पेश करन वाला वकील खड़ा होके कर वो खड़ा होके केस नूं सुनांदा है कि एक केस किस प्रकार है। इसे तरह भाई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हन उन्हां अगे असी अपनी अर्ज सुनानी है ते सानू खड़िया होके सुनानी पए। आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सावधान हो गए खड़े हो गए। तीसरी विधि मेरे खड़े ही नहीं होना की करना है
1: कोई कर जोड़ करू अरदास तुद भावे ताने रास।
0: सावधान खड़े हो गए फिर साहब कहने दो एक कार कर केंद्र ने हथा दोवे हाथ जोड़ लैनी दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावीता आनी रास। हे मेरे मालिक मैं जो अरदास कर रहा जे तेनू भा जाए तेनू चंगी लगे ते मेरी अरदास मंजूर हो सकती। खड़े हो गए सावधान हुण दोवे हाथ जोड़ लै उस मालिक नू अरदास सुनाण वास्ते। साहब कहिंदे ने उस तो बाद की होना चाहिए
1: है हजूर हाजर अरदास।
0: सब तो जिहड़ी अहमियत रखण वाली गल है ना वो ये है कि साडे मन नू यकीन है भरोसा है अकीदा है फेत है कि ऐसा विश्वास है कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहा वो बैठा सुन रहा। जे साडे मन नू ही यकीन नहीं ते अरदास सुना किनू रहे। ए यकीन होना बड़ा जरूरी है। है हजूर हाजर अरदास ओ भाई ओ ते हाजर है हजूर तेरे सन्मुख विराजमान है तू आप हाजर होके अरदास कर। क्योंकि आप नू याद होवेगा गुरु नानक गए हाजरा दी नमाज विच हाजर नहीं होए सत संगत वो गए हाजरा की अरदास हाजिर हो गए बिल्कुल नहीं। मन नू यकीन होवे है हजूर वो है हां हाजिर अरदास मैं हाजिर होके अरदास करा। क्योंकि बहुतियां दा शिकवा गिला है शिकायत है कि साडी अरदास मंजूर नहीं हुई बड़े चिरां तो अरदास कर रहे हैं अरदास मंजूर नहीं हुई। वो बोलिया ए भी तो हो सकता है तेनू अरदास सुनानी नहीं आई तेनू अरदास करनी नहीं आई। एक शायर ने बड़े कमाल की गल कही तो कहना खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है बस यही तो मुश्किल है ये बड़ी मुश्किल से होती है। गल तो यह है कि हुंदी बड़ी मुश्किल है जब तक सावधान ना होवे खड़ा ना होवे हाथ ना जोड़े मन नू यकीन ना होवे कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहा वो बैठा सुन रहा है अरदास सुना किनू रहा।

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहिंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वह भी आए हैं। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवां दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दिती। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की, सरसा नदी पार किया, गुरु साहबां का सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते 40 दे करीब सिख एक पासे, तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी, इहदे हथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करती है। ठोकर लगी, थले डिग पई, सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना है, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद किया गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली ने। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनूं बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम उठ के खलोई, गर्ज के कहन लगी, ओ दुष्टा परा हो जा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रत्यक्ष दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। समुंद खान मानो पत्थर का बुत हो गया,
ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 100 ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸਾਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।